0: क्या.
1: ओके जी, थैंक यू सो मच.
2: ठीक
1: है, नहीं बहुत शुक्रिया थोड़ा, थैंक यू. बट कॉमन नोशन ही हुंदा बंदे दा, बंदे देखो आम तौर ते जिहड़ा बंदा ऐ कहेगा उहदा तां इह है यार कि उह बंदा ते तू मेरी घर वाली है भी तैनू किवें उह ट्रेन करेगा, दैट्स इट. कोई होर लॉजिक तो होंदा नहीं इसके पिछे. ये है कि चलो कितना कितने कह सकते हो एक इनसिक्योरिटी या एक इंटाइटलमेंट या कोई ऐसी चीज़ है. जरूरी मैं नहीं कि ऑलवेज उस बंदे को कोई ना कोई जस्टिफाइड रीजनिंग होंगी है, बट चलो टू ईच देयर ओन एंड सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तुम भी अपना दे सकते हो. एट 9056733337 विल बी बैक. एक मैं गाना ला रहा थोड़े लिए, गाना कह रहे हैं नवी, मैं यू नो तुसी मैनू प्ले नहीं कर सकते, क्यों भाई साड़ी भी राइट है.

0: यहाँ हद 6% होगा
1: जी,
0: वो 50% होता है दुध। और एक कुदरत ही है कि पानी दे विच उहदा बच्चा देख लो कि वो मिक्स नहीं होंदा पानी दे विच, इतना घना होंदा है। ते जे बंदा आखे ना कि मैं इहदे वास्ते कोई एक अपने कोई एक रिजक दा करा है
1: जी,
0: तो टणा दा कित्थों एक लैके आ।
1: बिलकुल जी बिलकुल,
0: ये वो अपर आला ही है जिन्हें सानू एक अपने ना वो छतरी दिती हुई है
1: जी,
0: छतरी थल
1: बिलकुल नहीं बहुत खूबसूरत।
0: हाँ जी हाँ जी बिलकुल, अपने ना किसी का दिल ना दिखाओ है भाई, मोहब्बत वंडो
1: का
0: कोई पता नहीं है, बड़ी शार्ट कोई है अपने लखा साल एक जीवन तो ना सी लैके आए।
1: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
0: खाली हाथ है, खाली हाथ ही चला जाना
1: है, बस इन गल। थैंक यू सो मच।
2: कॉल करो 4373150705070।

0: ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहिंदियां की करा
1: मैं सुनिया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
3: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
3: 905-459-5533
1: 905-459-5533
3: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट

0: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि वहाँ किसी भी चीज की पूरी सुविधा नहीं है, भीड़ से भरी क्लास और शोर परेशान कर देता है और मदद कभी भी पूरी नहीं पड़ती। ये इसलिए है क्योंकि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में से $6.5 बिलियन काट दिए हैं। हमारे बच्चे इससे बेहतर के हकदार हैं। आइए सरकार से कहें हमारे बच्चों में निवेश करें, क्लास साइज ठीक करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ओंटेरियो की ओर से एक संदेश।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल
1: 647-706-6640-647-706-6640।
2: दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनिया सेवावां प्रदान करदे ने 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसीसागा सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन।

तो जी गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते। आपका पंकज पंजाबी जी हाजिर है आपके साथ अपने प्यारे शो रेडियो आवाज 5:30 AM पे। आपका सबसे बड़ा स्वागत है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, चढ़दी कला का दिन जाए, सबका दिन बहुत ही बढ़िया जाए। आपका और हमारा साथ रहेगा जी 10 बजे तक। आप सुनते रहिए जी रेडियो आवाज़।

0: चलिए जी आज की दिन की करते हैं शुरुआत। जी शुरुआत में आज तक मौसम थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडी ज्यादा बढ़ चुकी है। सारिया ने मुझे लगता है जैकेट ले ली है जी, जिसने नहीं ली है उनको आज ठंडी का सामना करना पड़ेगा जी। चलो जी आज का दिन अच्छा है। मुझे डेयरी रोड काफी थोड़ा बिजी लग रहा है, 401 भी काफी धीरे धीरे चल रहा है जी, और आज का दिन आपका अच्छा चले अच्छा जाए। जो भी आपके आज काम हो, सबसे पहले घर से निकलने से पहले एक बात जरूर करनी है, आपके परमात्मा को याद करना है, दो मिनट एक छोटे से अरदास करनी है और निकलना है। क्यों करनी है? क्योंकि आपका दिन जो भी आपके काम हो, जो भी आपके मतलब जो आपके राह है उसमें जो भी छोटी छोटी अड़खने हैं वो निकल जाएगी। और स्टूडियो में आज स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं जी 9:06 और मेरे साथ आज मेरे साथी कलाकार है जी, हमारे स्पेशल गेस्ट है जी परनीत जी नजारा की टीम से। परनीत जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप?
1: गुड मॉर्निंग पंकज जी, बस चढ़ निकला, आप बताएं कैसे हैं
0: जी? एकदम बढ़िया जी।
1: तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आज हम हिंदी में बात करेंगे या फिर आज आप पंजाबी से गल करेंगे?
0: आई थिंक जब मैं कैसे कि मैं हिंदी बोलता, पंजाबी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है,
1: हाँ
0: तो अगर मिक्स्ड हिंदी पंजाबी चलेगी दैट्स ऑल्सो फाइन,
1: क्योंकि मेरी मिक्स हो जानी है।
0: चलो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं पंजाबी में बात करूंगा, कि मुझे आती नहीं है। जितने जितने छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं मैं ट्राई करूंगा,
1: हाँ
0: आप पंजाबी बोलने की कोशिश कीजिए।
1: हाँ जी हाँ जी, वो हमारे घर पे होता है ना कि हमारे जो पापा होते हैं ना, हम वो उनके टाइप की हिंदी होती है, तो वो मतलब पंजाबी में हिंदी बोलते हैं
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं पंजाबी में हिंदी बोलने की कोशिश करूंगी आज आपके साथ।
0: चलेगा जी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो परनीत जी दिन शुरू हो गया है जी। सबसे पहले जो मैं कह रहा था कि जो अपने लिसनर्स है कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे है, कहीं कहीं जा रहे, तो आप आपका दिन मैं कहता हूँ कि आप प्रेयर से स्टार्ट करो, आप कैसे स्टार्ट करते हो?
1: हाँ जी हाँ जी, सो हमारे तो होता ही है, हमारे खासकर हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम
0: जी जी
1: बहुत हम कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो हमारे तो सभी के घर पे ये होता है कि सभी जब सुबह उठते हैं तो हम सब ही लाइक हमारे परमात्मा को याद करते हैं, तो हम सबका ही दिन वहीं से ही शुरू होना चाहिए ताकि हम उनको थैंक्स करें कि हाँ कि आज का दिन हमारा आपने बहुत ही अच्छा हमारा स्टार्ट हुआ है और कल का दिन बहुत अच्छा गया, चाहे कुछ भी गया हो लेकिन कल का हमारा दिन बहुत अच्छा गया हमें बहुत हिम्मत मिली कि हमने लाइक चीजों के साथ डील किया, और हमें आज भी हिम्मत देना कि हम चीजों के साथ डील करें और बहुत ही हमारा अच्छा दिन जाए।
0: जी जी नहीं, बहुत ही बढ़िया चीज कही पत्नी जी, जैसा भी आपका कल गया हो कल का आज पे कैरी फॉरवर्ड ना करें, नया दिन नया स्टार्ट कीजिए, जैसे भी हुआ जो भी हुआ भूल जाए, कल से क्या करना है पनीर जी, कल से जो हुआ है, कल में जो भी हुआ हो, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है, उसमें से एक सीख लेके आगे चलनी है।
1: हाँ जी हाँ
0: राइट जैसे आई थिंक हमन जी हमेशा कहते हैं कि हर दिन आप 1% इम्प्रूवमेंट आप में लानी चाहिए
1: जी।
0: इम्प्रूवमेंट आएगी कैसे? इम्प्रूवमेंट आएगी जो भी आप दिन में करते हो, देखते हो, उसमें सीखते हो, वो इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते चलो।
1: जी जी जी जी
0: राइट। तो परनीत जी आप आज का दिन शुरू हो चुका है, मैं अपने जो लिसनर्स हैं, सबसे पहले एक मतलब जो भी हमारे लिसनर्स पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो रेडियो 530 AM की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 किलोमीटर तक जाती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कनाडा में आप सुन सकते हो, आप लंदन से लेके लंदन सार्निया से लेके ईस्ट में किंगस्टन ऑटवा तक आप हमें सुन सकते हो। नॉट ओनली दैट जी, बैरी सडबरी से लेके नीचे नायग्रा फॉल्स तक भी सुन सकते हो। नॉट ओनली दैट जी, अगर कोई यूएस में है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेंसिल्वेनिया, ये शहरों में भी आप हमें सुन सकते हो। यहाँ अगर ये शहरों में आप नहीं हो, आप हमें सुनना चाहते हो, तो आप फोन भी कर सकते हो हमको, फोन की नंबर है 416-477-2040, तो ये नंबर पे लाइव भी सुना जा सकता है। नंबर में एक बार फिर बोलता हूँ, 416-477-2040। और सबसे बढ़िया चीज, अगर आपको हमसे बात करनी है तो कौन सा नंबर है पनीत जी? 905-673-3337, 905-673-3337।
1: हाँ जी हाँ जी, हम तो सिर्फ पंजाबी से बोले हैं ना।
0: मैंने वही कहा कि मुझे पंजाबी आती नहीं है, थोड़े थोड़े वर्ड आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ।
1: जी जी जी जरूर जरूर
0: जी,
1: कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहोगे आपको पंजाबी सिखा देंगे हम।
0: अमन जी के साथ रह रहे के मैं आई थिंक 50% पंजाबी समझ लेता हूँ।
1: हाँ
0: अभी 50% बोलने की टाइम है।
1: जी जी जी
0: हाँ जी, चलो आज की जब हमारे लिसनर्स कहाँ कहाँ पे, चलिए जी एक चढ़ दी कला का मैसेज तो बनता है जी। आज हमारे साथ परनीत जी है, आज तक अपना जो सफर है वो रहेगा 10 बजे तक। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ अपने एडवर्टाइजर्स आएंगे उनसे कुछ डीले लेंगे, कुछ मजेदार बातें करेंगे जी। तो जुड़े रहिए 10 बजे तक, और स्टूडियो पे आप हमें हमारे साथ बात कर सकते हो जी। नंबर है 9056733337 पे 9056733337। तो जल्दी से कॉल करिए और हमें एक चढ़दी कला का मैसेज दीजिए। हमारी आज टीम 7 नए टीम मेंबर जुड़ चुके हैं, तो उनको भी हमको एक बूस्ट चाहिए, एक बैकअप सपोर्ट चाहिए जी फैमिली की तरफ से
1: जी, जी,
0: क्यों पन्नी जी?
1: जी जी जी जरूर।
0: चलिए जी, पन्नी जी मेरे काफी 1-2-3 सवाल है
1: जी।
0: उससे पहले मैं जो भी लिसनर्स है उनके लिए ना एक छोटे सा गाना लगाना चाहता हूँ जिससे एक थोड़ा सा एक एनर्जी बढ़े
1: जी, जी,
0: राइट ये भी मतलब मैं पंजाबी गाना है ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूँ कि यू नो मैं जो भी मुझे अच्छे गाने लगते हैं मैं बार बार सुनने की कोशिश करता हूँ, और उससे भी वर्ड्स और मतलब आप मुझे कुछ उसमें से सीख मिलते तो मुझे बताइए प्लीज
1: जी जी जी जरूर जरूर।
0: तो ये आ रहा है आपके लिए।

0: जगबीर सिंह जी,
1: हाँ जी सर, मेरा
0: सत
1: आंसर, ये मेरा आंसर है ये परछावां, नहीं चल माया।
0: ओके
1: हाँ जी,
2: हुण देखो जी, तुसी फिर पंकज जी ने कंफ्यूज करता। पंकज जी परछावां की हुंदा?
0: परछावां मतलब शैडो।
2: ओ वाह जी वाह, तुसी साडा पंजाबी दा लिसनिंग टेस्ट क्लियर कर चुके हो जी। जी जी जी जरूर, धन्यवाद तुहाडा ये साडनु कॉल करन दे लई, ते असी तुहाडा आंसर नोट कर लिया।
0: राजवीर सिंह जी,
3: हां जी सत
0: श्रीकाल जी।
3: हां जी, साडे घर दे साडे जेडे मेन मोम आ, ते दूजी आले दा मेरे साहब ना डोर आ, साडी दादी जी भी सुनांदे हुंदे कि डोर दा एक तक तां आपां बंद करदे आ, दूजा कहिंदा तू चल में आया।
2: जी जी सही गल आ, सही गल आ,
0: काफी बढ़िया आंसर। सो थैंक यू सो मच आपके आंसर के लिए जी, सुनते रहिए जी शो, आपको अपना विनर हम अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट कॉलर जी 4465।
4: हाँ जी सत
0: श्रीकाल जी,
2: सेकंड लेडी इन द हाउस,
0: ये चलो वुमन पावर।
2: जी जी
4: जी, उन्होंने दस दिया जवाब वाला दरवाजा हुंदा है, चल में आया।
0: जी जी
2: जी जी जी, सो असि तुहाडा शुभ नाम मैम?
4: मेरा नाम माला।
2: नजारा ते जाके अल्फ्रेडो पास्ता जो भी साडे विनर होणगे, साडे लकी ड्रॉ होणगे, उत्थे जाके तुसी पिक कर सकदे हो, ते तुसी रेफरेंस देनी है रेडियो आवाज दी।
0: जी जी,
2: चलो जी साडे कोल साडे नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके ने जी।
0: 8981।
5: हेलो, हां जी गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर, सत श्रीकाल चढ़दी कला जी।
2: चढ़दी कला,
5: हां जी हां जी, ते आंसर दस ही दिता हैगा, ये दरवाजा हुंदा जी।
0: जी
5: चल तो मैं आया। हां जी हां जी,
0: भाजी आपका नाम बताएंगे प्लीज?
5: बलजीत सिंह।
0: बलजीत सिंह कहाँ से बोल रहे जी? भाजी ब्रैम्पटन से। चलो जी, थैंक यू सो मच, आपका हमने जो आंसर है नोट कर लिया है जी। और हमारे पहले क्वेश्चन का जी वो भी आंसर दीजिए कि आपके घर में बॉस कौन है?
5: बॉस वहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है, एक सब प्रेसिडेंट है।
2: प्रेसिडेंट मेरी वाइफ है।
5: प्रेसिडेंट जिदा मैं कहना, प्रेसिडेंट मेरी वाइफ सब प्रेसिडेंट।
2: ओके जी, फिर गल ऐदा ना कि प्रेसिडेंट को सर पावर्स ने यूज नहीं कर सकता, पर
0: छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जैसे अपना होता है जी, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक होम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो हमारे घर में ओहदा कोई भी हो, लेकिन जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारा कुछ, डिफेंस मिनिस्टर, सारा एक ही है।
2: जी जी जी जी जरूर, पर गल ऐदा हुंदी है ना जी, हुण ओही गल आ गई, हुण पंकज जी अपना पक्ष डिफेंड कर रहे हैं।
0: जी जी जी,
2: सो तुसी एज अ प्रेसिडेंट तुसी बिल कर सकदे हो, पर बिल पास करना ते ओते अमल करना ओ फिर प्राइम मिनिस्टर दे हाथ च ही हुंदा।
5: हां जी हां जी हां जी, ते दूजी गल मैं पुछणा सी, अमन जी काफी दिनां तों आ नहीं रहे।
0: जी जी जी,
5: हाँ जी हाँ जी,
0: नहीं उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, तो वो रेस्ट कर रहे हैं।
5: ओके,
0: वो प्रोबेबली शो आई थिंक सैटरडे उन्होंने कॉल भी किया था, आज भी थोड़े टाइम बाद अपने साथ जुड़ जाएंगे, और अपने साथ मतलब वो है, सुन रहे हैं, लेकिन उनको रेस्ट की थोड़ी जरूरत है।
5: ठीक है ठीक है
0: जी, जल्दी आ जाएंगे, स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे जी।
5: ठीक है जी, ठीक है,
0: चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। या तो भी जो भी लिस्टनर्स है अपने साथ जुड़ते रहिए जी। परनीत जी का सवाल है, तू चल मैं आई, इसका सवाल उसका जवाब क्या है?
2: हाँ जी हाँ जी, और पंकज जी फिर तो एक बार साड़ी हिंदी पंजाबी कंफ्यूज कर गई।
0: ओके, कंफ्यूज कर दी।
2: तू चल मैं आया।
0: ओके, मैं आया।
2: हाँ जी, तू चल मैं आया।
0: पन्नी जी, जब मैं कहता हूँ ना, मेरा बेटा मतलब कुछ काम करते हैं, मैं जब मैं बिजी हूँ उसको मैं बोलता हूँ तू चल मैं आया, और मैं कभी जाता ही नहीं हूँ। बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, वो एंगल से सोचता हूँ। जी जी जी चले जी, स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं जी 9:35 और अपना साथ काफी मजेदार बातें हो रही है जी। आप भी कहीं से भी सुन रहे हो जी हमें, आप कॉल कीजिए 905-673-3337 905-673-3337

0: आप हमें कॉल कीजिए और आपके जो भी विचार है सांझे हमारे साथ सांझे कीजिए। सही बोला जी,
1: हाँ जी हाँ जी। एक तो हेल्पिंग वर्ब इधर उधर होंगे
0: जी।
1: और चलो कोई गल नहीं, आप सही करवा देंगे, अपने लिसनर सानू कॉल करके सही करवा देंगे।
0: आप कैसे हैं? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: जी मैं बोल्टन से बोल रहा हूँ।
0: ओके, बोल्टन से बोल रहे जी। अमनदीप जी, चलिए आप अपने हमारे साथ कॉल किया है तो हमारे दो सवाल के जवाब दीजिए।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी। अपने एक पहला सवाल जो था कि आपके घर में आपका बॉस कौन है?
2: जी मेरे घर में तो मेरे मतलब पेरेंट्स ही हैं, मम्मी पापा।
0: पेरेंट्स है, ओके, क्या बात है, सबसे बढ़िया बात है।
1: जी जी जी जी।
0: अमन जी, आपके आवाज से यू नो आपकी जो भी विनम्रता है वो झलक रही है जी। आप मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको काफी सारा अच्छे से यू नो क्या कहते हैं, अमन जी हमेशा कहते हैं कि साऊ कहते वो, मुझे नहीं पता
1: क्या ठेठ पंजाबी शब्द तुसी बोल रहे हो।
0: नहीं, मैं इसे सीख रहा हूँ जी, तो वैसे आई थिंक काफी आपको अच्छी सीख मिली है। और अमन जी, दूसरा हमारे जो क्वेश्चन का सवाल है वो भी दे दीजिए। तो पन्नी जी, मैं इसमें गलती कर दूंगा।
1: हाँ जी हाँ जी। सो साडा सवाल सीगा, जो काफी सारे लिसनर्स ने सानू कॉल करके सानू जवाब दिता। सो साडा सवाल सीगा कि तू चल मैं आया।
2: हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रहा था जी, वही डोर दरवाजा आंसर।
0: डोर दरवाजा
1: जी जी जी। देखो पंकज जी, एक गल तो आपां नूं मन्ननी पैणी, अपने लिसनर्स अपना इन्ना ध्यान रखदे ने, आपां सिर्फ एक बार अनाउंस कीता कि तुसीं प्लीज माझे मालवे वाली आपां मतलब बोली ना मिक्स करिए, माझे मालवे दुआबे वाली, क्योंकि ऐसे काफी शब्द इदां दे हुंदे आ कि असीं इको चीज नूं काफी नावां नाल बुला लैने आ जिहड़े पंजाबी दे विच हुंदे आ ना,
0: ते
1: सारे ओह तुहानूं तुहाडा इन्ना खास ख्याल रखदे ने ना
0: कि
1: ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ।
0: ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਪ ਜੀ ਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ, ਔਰ ਆਪਕਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। पन्नी जी, और एक मतलब जैसे कहते हैं ना, जो भी लिस्नर्स इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, तो मैंने एक चीज देखी कि मतलब पंजाबी लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। और मतलब नॉट ओनली पंजाबी, जो भी अपने लिस्नर बेस से काफी क्रॉस कम्युनिटी से भी हमें लोग कॉल करते हैं, और मतलब सच में उनका दिल काफी बड़ा है, और मैं उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, और मेरा नाम भी पंकज पंजाबी रखने के लिए जी।
1: जी जी जी।
0: अपने साथ जुड़ चुके हैं जी जसवंत गरेवाल जी।
3: हेलो जी,
0: सत श्री अकाल जी भाजी।
3: बस ठीक है, मैं सॉरी ब्रोकन हिंदी है।
0: नहीं चलेगा जी।
3: तो जो ट्रक एंड ट्रेलर होता है ना,
0: जी जी,
3: उसको भी कह सकते हैं तुम आप जो तू चल मैं आया। जो ट्रेलर दोने वो असली तो वो है। पंजाब में पता क्या होता है, पंजाब में ट्रॉलियों में लिखे थे तू चल मैं आई
0: जी। ओके,
3: देखोगे ट्रॉलियों में लिखा होता है, क्योंकि मैं तो आई 56 ईयर हो गए इधर आए को इस कंट्री में।
0: ओके जी, ग्रेट ग्रेट।
3: क्योंकि हमें याद आया भी उसको लिखा होता था हमारे बाबे वगैरह दादिया ने।
0: जी जी,
3: जो तुम यानी पंजाबी लिखा था तू चल मैं आई।
0: ओके,
3: क्योंकि डिफरेंट है थोड़ा जा स्टोरी वॉलेड। आप दरवाजा कह देने, दरवाजा जो एक होगा उन एक तो पहले अंदर आएगा फिर ही आ जाएगा ना, इन आउट होगा।
0: जी जी जी जी जी। आई थिंक काफी यू नो लॉजिकल आपने आंसर दिया। अभी मुझे भी जो भी आप कह रहे हो
3: ना, रहते हैं ना, जो कंटिन्यूस पीछे चलता ही रहता है, दो जो आगे वाला चलेगा तो पीछे वाला आएगा।
0: जी जी जी जी। आई थिंक बहुत ही सोच समझ के आपने आंसर दिया है जी। जसवंत जी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग,
3: अप्रिशिएट,
0: थैंक यू। उसके साथ नेक्स्ट कॉलर अपने साथ है जी, राधा जी।
4: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी राधा जी, कैसे आप?
4: मैं बिल्कुल ठीक, तो आप भी ठीक होंगे?
0: हाँ जी,
4: तो
0: बढ़िया।
4: मेरे हिसाब से मैंने जो पुरानी कहानी सुनी थी, एक पता नहीं आप लोग हंसी मत, मैं जवाब देने लगी हूँ।
0: नो प्रॉब्लम।
4: पता नहीं ये सही है कि नहीं, मैंने बाकियों के भी सुन रखे हैं
0: जी।
4: और इसका मतलब जो पुराने टाइम पे कुएं से पानी निकालते थे ना, जो डब्बे से लोहे से बने होते हैं
0: जी,
4: तो उसका एक पंजाबी में और भी नाम है, तो मैं अगर याद आ गया तो बता दूंगी। लेकिन पानी एक भर के आता डब्बा सा ऊपर और दूसरा नीचे जाता, तो मेरे हिसाब से उसको बोलते हैं जो खुद से पानी निकालते हैं कुएं से।
0: ओके,
4: तो भर के पानी ऊपर नीचे आता है, राउंड सा घूमता है ना वो।
0: जी जी जी, समझ में आया, समझ में आया।
4: हाँ, एक डब्बा भर के ऊपर आ गया, दूसरा भरेगा तब आएगा ना।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ गए जी,
4: कोई इसके पीछे स्टोरी है, कोई उसमें बोलते हैं कि तू चल मैं आया।
0: ओके नहीं नहीं थैंक यू सो मच जी, बहुत ही मतलब आपने सोच समझ के आंसर दिया है, तो थैंक यू सो मच राधा जी फॉर कॉलिंग, और सुनते रहिए जी अपना रेडियो शो रेडियो आवाज 530। पनीत जी अभी जब बात आती है जी रेस्टोरेंट की और नजारा की, आपके टीम से जी अपने साथ जुड़ चुके हैं जी चनप्रीत जी। चनप्रीत जी सत श्री अकाल जी, आप ऑन एयर हो।
5: हाँ जी सत श्री अकाल जी सारे ने जी
0: सारे ने।
5: तो जी जी बहुत ही सोनी सवेर दे नाल तुसी अज ब्रेकफास्ट करना है
0: जी,
5: नजारा पे आके नजारा दे तुहानू बहुत ही सोनी एम्बियंस दे नाल पीस ऑफ माइंड जिथे मिलता वा, पीस ऑफ माइंड ग्रीनरी दे नाल भरिया होया रेस्टोरेंट हैगा वा, उत्थे तुसी आओ ब्रेकफास्ट करो। अमृतसरी कुलचे तो लैके चने भटूरे, पहलगंज के चने भटूरे, या फिर तुसी कोई परांठे खाने है, कहिंदे कि आराम नाल पीस ऑफ माइंड च बूथ च बह के प्राइवेट बूथ च बह के खाना वा, कोई तुहाडी फैमिली हैगी फैमिली नाल आओ, बूथ च बह के डोर बैल लगी हुई है जी, बैल मारनी है तो अपने अटेंडेंट तुहाडे कोल आपे आ जाऊगा, उठ के तुहानू उठा के बुलाने दी लोड़ नहीं हैगी।
0: क्या बात है,
5: पहुंचो नजारा ते। उस तरह अगर कोई केटरिंग हैगी है, कोई बर्थडे पार्टी हाल रही है, कोई अपना बेबी शावर, कोई अपनी एंगेजमेंट हैगी है, या कोई भी होर प्रोग्राम हैगा तुहाडा, तुसीं चाहुंदे हो घरे हुण अगे ठंड आ जानी, स्नो पैनी शुरू हो जानी है,
0: उन्हें
5: ही ऑलरेडी ठंड शुरू हो गई है, मतलब शाम नूं काफी ठंड होंदी है, सो तुसीं चाहुंदे हो एक छत तुहानूं मिल जाए जिथे तुहानूं डीजे लाइट तो लैके बार विच बनी हुई है, फूड दे नाल नाल वाशरूम खुले, क्लीन वाशरूम, पार्किंग वड्डी हैगी है, सारा कुछ तुहानूं इक इको छत मिल जाए जिथे कि तुहानूं अपना घरे कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग ना पवे, कि तुसीं घरे डीजे वाला बुला रहे हो उहनूं अड पे करदे पए हो, टेंट लवा के टेंट वाले नूं अड पे करदे पए हो, उस तो अलावा फिर होर बहुत खर्च हो जाता है छोटे छोटे करते करते,
0: तुहाडा
5: जिहड़ा 40-50 बंदे का इवेंट हैगा
0: जी जी
5: 2000 तो लैके 2000 नहीं 4000 तक पहुंच जाता है
0: जी जी,
5: इन्ने छोटे छोटे खर्चे होते तुहानूं पता नहीं लगता, बाद च रियलाइज होता इन्ना खर्चा हो गया, सो वो सारा कुछ तुहानूं सेविंग्स दे नाल तुहानूं इक्को छक्के थले जे सारा कुछ मिलता तां तुसीं क्यों नहीं पहुंचोगे नजारा ते। डेकोरेशन बहुत लिमिटेड तुहानूं करानी पैंदी है, कई बार बिना डेकोरेशन तो भी सड़ जांदा है, वेल डेकोरेटेड रेस्टोरेंट है, पहुंचो नजारा ते, कोई भी गैदरिंग हैगी है तुहाडी कॉल कर सकदे हो 647-633-8878 647-633-8878 ते, या फिर कोई पिज्जा तुसीं खाना है शाम नूं अज 699 च मीडियम 3 टॉपिंग पिज्जा तुहानूं मिलूगा,
0: आना
5: है पिज्जा शेफ 13-13 ते, तीन बंदे ओनली 699 च लजोंगे 905-451-2600 905-451-2600 ते तुसीं कॉल करके पिज्जा ऑर्डर कर सकदे हो, कोई भी केटरिंग दी इनक्वायरी है लाइव केटरिंग करवानी है तुसीं ट्रक मंगवाना है करे 647-633-8878
0: तैयारी में, तो आप लगे रहिए जी, आपका हम मैसेज थोड़ा एक्सटेंडेड मैसेज आपके लिए दे देंगे जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। पनीत जी आई थिंक आपकी चनप्रीत जी ने काफी सारे होते शायद वो बिजी थे, थोड़ा मैं भी कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जैसे चनप्रीत जी ने कहा बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है, प्रॉपर बूथ है, और वहाँ पे आई थिंक बेल भी लगाई है, जब आप बेल एक दबाओगे तो आपकी प्राइवेसी के लिए जब भी चाहिए तो अटेंडेंस आपको आके अटेंड करेंगे। लिमिटेड अभी सर्दियाँ आगे आ रही है तो आपको बाहर आपके पास बैकयार्ड है, बैकयार्ड में करने के लिए सब टेंट लगाना पड़ेगा, हीटर लगाना पड़ेगा, फिर काफ़ी सारी चीज़ें यू नो मिस स्नो जब आती है तो भी ज़्यादा मतलब पंजाबी का वर्ड यूज़ करता हूँ खिलारा पड़ा जाता है राइट तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब अवॉइड करनी है, तो एक वन स्टॉप शॉप है जी आपका नजारा, आई थिंक मैं जब भी आता हूँ तो मुझे भी उसका एम्बियंस काफी बढ़िया पसंद है, जिस तरह से आपने डेकोरेशंस किए हैं, लाइटिंग्स की है, जिस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है, और एक कोजी एनवायरनमेंट मिलता है, बिकॉज बाहर ठंड है, आप घर पे अरेंज करने का इतनी सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेगी, उससे अच्छा आप नजारा पहुंचिए, सारी वहां पे अरेंजमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको डेकोरेशंस भी मिनिमलिस्टिक करनी पड़ेगी, अगर नहीं भी करनी है तो उनकी आपकी स्टेज ऑलरेडी है राइट
1: जी
0: जी सो सारा बना हुआ है,
1: और उसके अलावा पंकज जी मैं आपको और हमारे सारे लिसनर्स को एक और बात बता दूं।
0: जी जी
1: हमारे पास एक वीकडे स्पेशल डील चल रही है।
0: जी जी
1: 30 पीपल की गैदरिंग पे 30 पीपल की गैदरिंग हम सिर्फ करते हैं $1,000 में।
0: जी जी
1: और $1,000 में आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको पूरा सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, आपको अनलिमिटेड फूड सर्विंग्स मिल जाती है, तो आप हमसे कितनी भी फूड सर्विंग्स ले सकते हैं और उसके साथ साथ अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आपको उस पैकेज में ही मिल जाएंगे।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी हाँ जी। और उसके साथ हमारे डीजे सिस्टम हो गया, हमारे जो लाइट्स हो गए, लाइट सिस्टम हो गया,
0: हम
1: डिम कर देते हैं आपके लिए, हमारा लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गया, हम आपको म्यूजिक का एक्सेस तक दे देते हैं कि आप अपने खुद के गाने प्ले कर सकते हैं और खुद का एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट हम आपको आपका पूरा इवेंट प्लान करके देते हैं। इट्स नॉट कि आप हमको पे कर रहे हैं और हम आपको बोल रहे हैं कि आइए हमारे पास ये खाना है लग गया, नो नो नो, हम आपको पूरा इवेंट प्लान करके देते हैं, हम आपको आपका पूरा मेन्यू आपके साथ बैठ के डिसाइड करते हैं और हम आपको बोलते हैं कि हमारे पास आके जाइए, देखिए हमारा सारा एम्बियंस देखिए, बैठ के हम आपका मेन्यू डिसाइड करते हैं और खासकर हम आपको फूड की टेस्टिंग करवाते हैं पहले ताकि आप श्योर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। और सर्विस की तो आप बात ही ना करें क्योंकि मैं खुद वहां पे होती हूँ, तो सर्विस तो हमारी अच्छी ही होती है, हमारी वन ऑफ द बेस्ट सर्विस हमारी मानी जाती है आज के टाइम पे मार्केट में। तो गेस्ट सर्विस से लेके आपको फूड तक कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, इन $1,000 फॉर 30 पीपल इन वीकडेज, पंजाबी में मैं अनुवाद कर दूं
0: जी।
1: सो 30 बंदियां लई $1,000 दे विच अनलिमिटेड फूड सर्विंग ते अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स तुहानू मिल जाणगे। तुसीं पहुंचना कित्थे है, नजारा ते, ते जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि साडीआं बुकिंग ने जिहड़ीआं साडे स्लॉट्स ने जिहड़े ऑलरेडी बुक हो रहे ने। ते तुसीं कॉल किहड़े नंबर ते करनी है सानू इनक्वायरी करन लई 905-451-2600 905-451-2600 ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੰਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਔਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ $1,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਣਿਆਂ ਦਾ प्लान आउट करके दवांगे जी।
0: जी नहीं बहुत ही बढ़िया है जी। आई थिंक ये इस तरह की डील आपको कहीं नहीं मिल सकती इतने सारे मतलब फैसिलिटीज के साथ में, और वीकडे स्पेशल डील है वो आप जरूर ग्रैब कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो आपने एक चीज कमेंट करना चाहूंगा कि जिसने इतने शॉर्ट टाइम में आपने जो कमेंट्स किया है, जो मतलब आपने कस्टमर सर्विस में आप कहते हो आपकी अच्छी कस्टमर सर्विस है, वो मैंने भी देखी है लाइव ऑन लोकेशंस में जो भी मैं आता हूँ देखी है। तो वो आप जो भी लिस्टनर्स हैं आपको ये सारी चीजें का लाभ उठाना है तो पहुंचिए जी नजारा। नजारा लोकेटेड है जी 30 रैम्बलर ड्राइव पे। नंबर टू कॉल इज 905-451-2600 905-451-2600 पे आप कॉल कीजिए, पार्टी बुक कीजिए, सबसे पहले जाके माहौल देखिए, एम्बियंस देखिए और फूड टेस्ट करके जरूर आइए। और आज के लिस्ट जो भी लकी विनर है उसको नजारा की तरफ से मिलेगा जी अल्फ्रेडो पास्ता, जो उनका सबसे पसंदीदा पास्ता है, ये आपको मिलेगा। पनी जी बहुत ही अच्छा लगा इतनी सारी इंफॉर्मेशन लाभ उसकी सुन के, और अपने साथ अभी बहुत ही खास गेस्ट जुड़ने वाले हैं जी, तो मैं उनको ऑनर करता हूँ। हेलो
6: हेलो
0: अमन सर, सत श्रीकाल जी, गुड मॉर्निंग और वेरी वेलकम टू द शो।
6: हाँ जी थैंक यू सो मच प्रनीत, सत श्रीकाल तुहानू ते सारे लिसनर्स नू सत श्रीकाल। और मैं ना अज मतलब तुहानू पहली बार, मैंने लगा 10-12 दिन हो गए मैनू ना आए हुए
0: जी जी,
6: ते पहली बार मैं तुहानू सुनिया, मैनू बड़ा अच्छा लग्या। मतलब मैं कहूंगा कि ना कि नैचुरल मिक्सचर सीगा भी, मैं थोड़े शोर जी मैं सुन रहा सी ना
0: जी जी,
6: इवन मैं ब्रॉडकास्टर जी, मैनू तकरीबन 15 साल हो गया ऑन एयर आए नू। सत श्रीकाल कहना सारे नू, मेरा नाम अमनदीप सिंह बेनपाल आ, ब्रॉडकास्टिंग च मैं अलग अलग चैनल 15 साल जिहड़ा हैगा ऑन एयर होए हो गए, ते साडे हमेशा शो दा एक निचोड़ हुंदा एक जिहड़ा कि तुसीं अपना टाइम साडा इनवेस्ट कर रहे हो सुन रहे हो, ते इही कारण है कि AM530 लई मैं कहना ना असीं कोई बिल बोर्ड लाए, ना असीं कोई बसां ते साइन लाए, असीं लोकां दे दिलां दे उत्ते ठप्पे लाए ने, यानी कि लोकां नूं कहिंदे ने कि AM530 जरूर सुणियो ते तुहानूं शो च कुछ ना कुछ मिलूगा। मैं बड़ा थैंकफुल हां और ब्लेस्ड हां कि आ मैं कुड़ी नूं कहना हुंदा इहनूं जदों मैं कदे नूं मिला, मैंने कहना ना बहुत तेरे अंदर टैलेंट है, बहुत तेरे अंदर फ्यूचर दा जिहड़ा मैं देख रहा ना अमनदीप हैगा, बट अपने कुछ चीजां नूं कंट्रोल करना पैणा उहदे नाल, फिर तेरी ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੰਕਜ, ਪੰਕਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਕਸਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਜ਼ਰਾ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ
0: 10 ਦਿਨ
6: ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੈਲਥ
0: ਜੀ,
6: ਹੈਲਥ ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਡੇ ਆਫ ਲਏ ਵੀ ਡੇ ਆਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਪੰਕਜ
0: ਜੀ
6: ਡੇ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ
0: ਜੀ।
6: ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਂਗੂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਮਤੀ ਹੈ,
0: ਤਾਂ
6: ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਨੀਗਾ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਆ
0: ਜੀ ਜੀ,
6: ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਚ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਚ ਆ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ
0: ਜੀ,
6: ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੰਕਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ
0: ਜੀ ਜੀ
6: ਕਿ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ
0: ਜੀ,
6: ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ
0: ਜੀ ਜੀ,
6: ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ
0: ਜੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ।
6: ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ
0: ਜੀ ਜੀ,
6: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
0: ਜੀ।
6: ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਭੋਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲੀਏ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
0: ਜੀ,
6: ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਨਿਆਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀਨ ਕਬੂਲਣਗੇ ਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਨੀ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦਿੱਤਾ
0: ਜੀ,
6: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤ ਲਈ ਫੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਜੋਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਸਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਸੂਨ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਕਜ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।
0: ਨਹੀਂ ਜੀ,
6: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ
0: ਜੀ।
6: ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦੇ, ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਵਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਸੈਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੋਰ ਦੇ ਟੋਪ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡਡ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਫੋਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਫੋਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਹ ਫੋਰਡ ਆ
0: ਜੀ।
6: ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
6: ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ
0: ਜੀ।
6: ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
6: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ
0: ਜੀ ਜੀ,
6: ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੌਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ, ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੀ ਹੈ।
0: ਜੀ ਜੀ, ਉਨਕਾ ਜੀ 416-206-3200
6: ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ $3-4 ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ $100 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਜਮੋ, ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ ਹੁਣ,
0: ਤੇ
6: ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਪਵਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
0: 647-325-9100 647-325-9100 ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਪਵਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ।
6: ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਨੀ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਬੈਂਕ ਨੀ ਮਰਨਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਉਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਮਕਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਮਕਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 36 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨਾ ਹੀ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਰਾਊਂਡ 70% ਪੇ ਬੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਚ।
0: ਜੀ,
6: ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, 416-518-3200 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 416-518-3200। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਅ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਕਾਨੀ ਨੇ 4 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਰਪ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਂਡੀਆ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ, 3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੇਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਡੈਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਵੋਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਓ 416-518-3200 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, 416-518-3200 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਬ ਵੀ ਅਮਨ ਸਰ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਤੇ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਆਏਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਮ ਛੋਟਾ ਸਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਜੀਏ, ਹਮ ਦੇ ਦੇਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਉਨਕਾ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਟੈਕਸ ਕਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਇਨਕੇ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਬ੍ਰੈਂਡਫੋਰਡ ਔਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਗੋਲਫ ਲੰਡਨ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਨਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 416-720-3642, 416-720-3642 ਪੇ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਮਲ ਜੀ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 905-239-7711। ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਡੀਲਸ ਹੈ। है अभी दिवाली के लिए, अक्टूबर नवंबर के लिए स्पेशल पैकेजेस है, तो जरूर कॉल कीजिए जी आप कोमल फ्रॉम ऑल लिंक ट्रेवल से। और आपको डक क्लीनिंग करवानी है तो नानक डक क्लीनिंग जैसा कोई भी आपको अच्छा डक क्लीनिंग करके नहीं देगा, उनके पास बहुत ही बढ़िया रेट है। कॉल करना है जी 416-729-1529 पे आप उनको कॉल कीजिए, और बिना हैसल के आप उनको डक क्लीनिंग करवा सकते हो 416-729-1521 पे आप इन्हें कॉल कर सकते हो। और ऑल स्टेट इंश्योरेंस से दीक्षा गुलेरिया, कोई भी इंश्योरेंस करवानी है होम और ऑटो इंश्योरेंस तो आप दीक्षा गुलेरिया जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो 647-659-2810 पे आप कॉल कीजिए जी दीक्षा गुलेरिया जी से। उसके साथ साथ में जी रियलिटी ग्रुप के, रियलिटी ग्रुप से आप अगर कोई भी रिनोवेशंस का काम करवाना है जी सुखमन जी को कॉल करनी है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया बड़ी बड़ी इमारतें पेंट की है, गवर्नमेंट बिल्डिंग से लेके टेंडर्स में पार्टिसिपेट करके काफ़ी सारे काम्स किए हैं, तो इनको आप सुखमन जी को कॉल कीजिए रियलिटी ग्रुप से 416-816-8401 रियलिटी ग्रुप को आप कॉल कीजिए जी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। उसके साथ साथ में महंगाई के दुश्मन फ्रेश ग्रोसरी डेपो, आप कोई भी इनके पास काफ़ी सारी डील चलती हुई है, ब्लैक फ्राइडे वीकेंड के डील का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी जाइए रात को 12 बजे तक खुला होता है जी फ्रेश ग्रोसरी डेपो 905-451-458-1300। ये लोकेटेड है जी 31 स्टेपल बुश एवेन्यू टॉर्बम एंड सैंडलवुड का इंटरसेक्शन। इसके अलावा ये डरम रीजन में भी है जी विटबी में 1618 डंडा स्ट्रीट ईस्ट विटबी में भी प्रेजेंट है ये, तो जो ब्रैम्पटन में डील्स मिलेगी वही आपको विटबी में भी डील मिलेगी जी फ्रेश ग्रोसरी डेपो। ब्रैम्पटन का नंबर है 905-458-1300, विटबी वाला नंबर है जी 905-556-1651 905-556-1651 को आप कॉल करके वहां पे आप पहुंच सकते हो जी फ्रेश ग्रोसरी डिपो। तवा किचन का भी हम मैसेज दे देते हैं जी, आपको कोई भी प्रकार की केटरिंग करवानी है, ब्रेकफास्ट करवाना है, आपको कुछ भी वहां पे टेकआउट लेना है जी, वहां पे उनकी 2 for $12.99 डील चल रही है जी, तो जरूर पहुंचिए जी तवा किचन पे। नंबर है जी 9057901699 पे आप उनको कॉल कर सकते हो जी। इसके साथ साथ में जी बोल्टन स्प्रिंग स्प्रिंग स्पेशलिस्ट 9058518222 पे आप कॉल कर सकते हो जी बोल्टन स्प्रिंग द स्प्रिंग स्पेशलिस्ट, 25 साल का इनको तजुर्बा है जी इन दिस बिजनेस, तो ये लोकेटेड है जी 570 परसी रोड बोल्टन पे, तो जी बोल्टन स्प्रिंग पे जरूर पहुंचिए और जो भी डील्स है उनके पास, जो भी वर्कमैनशिप है उसका आप लाभ उठाइए। प्लस कोई भी अगर आप वेयरहाउस मैनेजर हमें सुन रहा है, ऑपरेशंस मैनेजर सुन रहा है जी, शिपिंग डिपार्टमेंट हमें सुन रहा है, परचेसिंग टीम सुन रही है, तो आपको पैलेट्स की ज़रूरत है, तो एमके पैलेट्स से बढ़िया आपको कोई भी पैलेट्स कस्टमाइज करके नहीं दे सकता, वो ISPM 15 सर्टिफाइड है, वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कस्टम स्किड्स करते हैं, कस्टम पैलेट्स करते हैं, कस्टम शिपिंग एंड इंडस्ट्रियल पैकिंग बिल्ट स्पेशली फॉर प्रोडक्ट्स फॉर इंटरनेशनल शिपिंग, तो इसके लिए भी करते हैं, तो एमके पैलेट्स इनको कॉल करनी है जी 365-866-2080 पे आप उन्हें कॉल कर सकते हो जी। और आज का दिन बहुत ही बढ़िया है जी, थैंक यू सो मच सारे लिसनर्स को जो भी रेडियो आवाज़ 5:30 AM आज सुन रहे थे, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और राजविंदर जी फ्रॉम कैम्ब्रिज, इन्होंने आज का विनर है, वो आज नज़ारा पे जाके उनका स्पेशल अल्फ्रेडो पास्ता फ्री ले सकते हैं जी, आज उनको कॉल करके आप अपना पास्ता बुक कीजिए और प्लीज़ कलेक्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आपका साथ हम कल भी जो रहेगा हमारे साथ 9 बजे से लेके 10 बजे तक, और सैटरडे को 10 से लेके 1 PM तक आप हमें सुन सकते हैं जो 1 PM तक आप हमें सुन सकते हैं जो, तो जुड़े रहिए जी रेडियो आवाज़ तक। थैंक यू सो मच।

0: रेडियो आवाज हर रोज सवेरे 9 to 10 बजे तक रेडियो आवाज।
1: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नू तां उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
2: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी। सच मनो स्वाद ही आ गया गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू। इना दी सर्विस एक्सीलेंट है। ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
3: 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountainash and Bovedda intersection या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699।

0: 8877 sofastudio.ca. Thank you, ji.
1: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਡੈਮੇਜ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਲ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ 905-452-99-55 905-452-9955
2: रात में छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो?
3: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे कर देने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
2: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनी जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
3: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
1: ਲੋ ਜੀ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਤਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ। 10:47 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
4: $50,000 to $1,70,000 तक ये फंडिंग होती है। आपके खाते में सीधा गवर्नमेंट से आती है। इस पैसे को आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। 0% पे लोन है, बिना गारंटी के है। और ऐसा लोन कहाँ मिलेगा जिसकी पहली किस्ती 2.5 साल बाद स्टार्ट और 15 साल में पे करनी है। शुरू में ब्याज 0%, 2.5 साल बाद ब्याज कितना है 2.5% पूरे साल का।
1: ठीक है ते इधे विच जिमें होना फैमिली ऑफ 4 and 5 है ना ते उना उना दा किन्ना क बन जांदा अमाउंट?
4: हाँ जी, सो गवर्नमेंट का जो ये फंडिंग है डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स पे। आपकी इनकम अगर कम है नोटिस ऑफ असेसमेंट पे तो ज्यादा फायदा है। बच्चे छोटे हैं तो और ज्यादा फायदा है, और बच्चे जितने ज्यादा हैं उतना और भी ज्यादा फायदा है। तो इसलिए अगर फैमिली ऑफ 4 है तो $1.5 लाख, फैमिली ऑफ 5 है तो $1,17,000 0% पे आपके खाते में गवर्नमेंट दे रही है। मिस ना करें, अभी आपको पता है ट्रेड वॉर चल रही है, कल को गवर्नमेंट और कोई कट्स ना कर दे इसके अंदर। बहुत लोग ले चुके हैं, प्रॉपर ऑफिस है हमारा, इसमें कोई भी नकली कागज नहीं लगता, साफ काम है, 8 साल से कर रहे हैं, कोई भी चलाकी नहीं है इसके अंदर।
1: ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये तो सारांश की गल बिल्कुल सही है क्योंकि जिवें हुण पहला जिहड़ा हैगा यह फंड जिहड़ा सीगा लोन जिहड़ा सी इहदा अमाउंट घट सीगा, हुण इहनां ने वधा दिता हैगा है ना, ते पहलां जिन्ना सीगा उह तों डबल अमाउंट तुहानूं हुण जिहड़ा मिलदा हैगा। ते कदे की गवर्नमेंट कोई स्टैप चकदी है ना, हो सकदा अगे जाके वध भी जावे, हो सकदा घट भी जावे, हो सकदा बंद भी हो जावे है ना, वी नेवर नो कि किवें जिहड़ियां सरकारां उह काम करदियां। सो तुसीं समां रहिंदे होए हुण तुसीं कॉल कर सकदे हो सारांश नूं ते कोई भी जानकारी लैणी आ उहदे बारे इहनां नूं तुसीं पुछ सकदे हो। क्लीन एंड क्लीयर अपने आप दे जिहड़े तुहाडे डाउट्स हैगे आ उह कर सकदे हो। ते मैं नंबर इक वार दे दिंदी आ, ते नंबर हैगा जी सारांश दा 437-264-3375 437-264-3175 ते गलबात कीती जा सकदी है। ते सारांश थोड़ी फीस जेड़ी हैगी अप फ्रंट है के बाद दे विचों ते किन्नी है?
4: हमने एंड टू एंड सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है क्योंकि फंडिंग के नाम से हम लोग इंक्लूडिंग मी डरते हैं, बट यहाँ पे कुछ हमने ट्रांसपेरेंट मतलब हमने कुछ हेराफेरी काम में है नहीं, ना हमने कोई कसर छोड़ी आपको दिखाने के लिए। कैसे हमने फीस लेनी है आपकी $199, शुरू में भी नहीं लेनी, काम होने के बाद लेनी है। मुझे अभी सुबह से 3 ट्रक आ चुके हैं, मतलब 3 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गिर चुकी है अभी तक, तो इसलिए आप पीछे ना रहिए। 1 से 3 महीने में आपके खाते में ठा करके फंडिंग आती है, मिस ना करें। फीस भी हमारी ट्रांसपेरेंट है, कोई भी मीठी बातें नहीं है, प्रॉपर ऑफिस है, 6 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हर एंटायर डेरी पे कॉल करें, ऑफिस है, एस्टिमेट कराएं, कल बैच स्टार्ट है। अगर आपने ये बैच मिस करा तो आपको 1 से 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा, तब तक तो आपके खाते में फंडिंग गिरी जाएगी। पीछे ना रहिए, नंबर नोट करें 4372641375, 4372641375। कॉल करो, एस्टिमेट लो 4372643175, 4372641375।
1: जी थैंक यू सरांश।
4: थैंक यू जी,
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, तुसी सरांश नाल गलबात कर सकते हो, ते सरांश नूं जेड़े भी क्वेश्चन तुसी पुछने हो पुछ सकते हो, क्योंकि कई बार ना आपां नूं बड़ा किसी चीज बारे इन्ना पता नहीं हुंदा, या आपां डरदे बड़ा रहिंदे आ, ऐवें बड़ा हुंदा है, कोई कोई पॉइंट ऐदां हैगे आपां कहिंदे लै आ तां पंगे ही लै लैणा छड्डो परे, है ना। पर नहीं, तुसी जदों जो भी डाउट हुंदा ना, वैसे ओह क्लीयर होना चाहिए आपां, ते तुसी जरूर अपॉइंटमेंट बनाओ, ऑफिस जाओ, जिहड़े पत्र पेपर है तुहानूं डॉक्यूमेंट्स कहिंदे है ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 4372641375, 4372643175 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਟਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਉ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਟਰਸਿਸ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮੈਟਰਸਿਸ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਟਰਸਿਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 6473389041 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, 6473889041 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 6478337271 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 6478332771 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਗਨਦੀਪ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਗਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੋਫੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 905-799-8877 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 9057999877 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ।

0: दोस्तों सासिका नमस्कार मगा थोड़ा बाद मंसरा जंस
1: टोरंटो गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन रियल्टर रव सिंह सेलुलर पॉइंट्स ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट्स

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
2: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

0: Friday, September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए बाहां च बाहां.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: Hi, this is Harpreet Singh from Top Choice.

0: Visitor Travel Super Visa Medical Insurance number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Charter Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
1: सर्विंग फ्रॉम

0: पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: लो जी प्रोग्राम पंजाबी विरसा नाल नाल मैनू मैसेज आ रहा नाल नाल मैं टाइप कर रहा मैसेज नाल नाल गल्लां बातां कर रहा टिकटां दी जानकारी पुछ रहे सारे जने हुण और मैं समझदा कि तुसीं टिकटां जल्दी जल्दी लै लो क्योंकि हुण टाइम ना ज़्यादा खराब करो। फ्राइडे आ गया नेड़े ही अज मंगल आपका दिन मंगल में हो और मंगलवार अज बीत गया समझो क्योंकि जदों दिन शुरू हो गया तो फिर बीत भी जल्दी जाता है। साल साल पहला विआह की तैयारी कर देने साल कदों आ जाता पता नहीं लगता और नंबर तुहाडे वास्ते हाजिर है मेरा तुसीं मैनू कॉल कर लो 6474481000 ते कॉल की जा सकती है तुहाडे वास्ते नंबर हाजिर है। और अगला गाना मैं किहड़ा लाउण लगा सी अगला गाना लाउण लगा सी मैं राती इश्के दी हुई बरसात सारी रात भिजदे रहे ते सानू नींद ना आई सारी रात भिजदे रहे। चलो हरजीत जी वो भी ला दो तेरा मेरा प्यार किते कागजी ते नहीं साढ़े नाल सोहणियो नाराज भी ते नहीं आहा हा कैसे। एक गाना मैं होर लाना मैनू ना पहला वो गाना वो ला लैन दो हंस भाई का जिहड़ा कि गाना बड़ा मकबूल होया छोटियां साहिबजादियां दे उत्ते गीत हंस भाई ने गाया सी निक्के निक्के दो खालसे ओ जोधे ओ गुरु रूप गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे सोहने सोहने पुत्तर। जे किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होवे ना ते उहदे च लिखिया होया कई चीज़ां ने कई बहुत जानकार जिन्हां नूं नॉलेज सी किताबां दे कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जिहड़े पुत्तर सी बड़े सोहने हुंदे सी जिहड़ा भी एक वारी देख लैंदा सी ना उहनां नूं ओह आकर्षित हो जांदा सी इन्ने सोहने लाल सी गुरु साहिबां दे ते कैसी वह गुरु साहबां दी हिम्मत होएगी गुरु साहबां दा दिल होएगा वह दादी दा कैसा दिल होएगा जदों तैयार करके फिर मुगलां दे कोल भेज दे। कैसी वह प्यो दा दिल होएगा जिस वेले अपने वड्डे साहब जी नूं कहिंदे आ वी जंग दी तैयारी करो कैसा वह बाप होएगा जिहड़े आप ठंड दे विच दिनां दे विच हैं किथे विछाइयां कीतियां मखमलियां दे सौन वाले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कैसे वह गीत बन गए कैसिया वह गल्लां बन गईयां जिहड़ी कि अज असी सुन के उस चीज़ च फकर महसूस करते हैं। आओ सुनिया जी गीत बहुत वधिया गीत है
3: बच्चे निहार

0: Listen live Vatno Do Radio with Sukhi Nijjar.
1: The wait is finally over. Gordy Kuman of REMAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at REMAX Gold Realty to book your unit today.
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
3: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
2: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
3: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
3: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते
4: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca
5: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157 416-570-0157

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: आज खुश तो बात हो गई था।
2: ओ ता होना ही है जदों ढिल्लों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तै नकदा बनदा ही है।
1: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
2: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ IPTV ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ?
3: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆਪਰ
2: ਓ ਭਾਜੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
4: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
2: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-1313 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
8: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निज्जर।

0: To everyone and Sat Sri Akal to all our beautiful listeners.
1: बिल्कुल जी बिल्कुल. अच्छा मुकेश जी, अभी तो मैंने बोला कि ठीक है अगर किसी को पहली बारी मॉर्गेज स्पेशली क्योंकि बात होती है, चलो थोड़ी सी बात इस पे भी करते हैं कि जब हम लोग पहली बारी मॉर्गेज लेते हैं वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द राइट पर्सन, है ना, कि किसके पास हम लोग जाएं जो हमें राइट गाइडेंस दे सके, है ना, ज्यादा हम लोग परेशान ना हो. सो उसके लिए थोड़ा सा आप एडवाइस जरूर दो लिसनर्स को.
0: बिल्कुल, देखिए फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या आप इस सिचुएशन में हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं और यू वांट टू ऐड ऑन. जैसे अभी आजकल प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ही कम है, ठीक है ना, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस है, मे बी 2018-19 के प्राइसेस मैच हो रहे हैं. तो वेर इन द बायर्स वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और मे बी वॉन्ट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी फॉर देयर चिल्ड्रन, देखें क्वालिफिकेशन इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट लाइक बिफोर कि आपने आज चक लेता है घर और क्लोजिंग हो जाएगी कल, राइट? तो ऐसा वाला नहीं है, यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी प्री क्वालिफिकेशन चेक करवाएं बेस्ड ऑन इनकम एंड क्रेडिट एंड योर अफोर्डेबिलिटी. फ्यूचर भी प्लान्स पता होना चाहिए. बच्चे स्टडीज हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल है या वेडिंग के आपकी अरेंजमेंट है, आपको इमरजेंसी फंड्स भी पता होना चाहिए अगले एक दो साल के लिए. साथ साथ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पता होनी चाहिए कि आपको जो है क्लोजिंग के लिए कितने फंड्स रिक्वायर्ड है, परचेज के लिए कितने चाहिए. $2,00,000 घर से आ रहे हैं, बिजनेस से आ रहे हैं, रीफाइनेंसिंग से आ रहे हैं, आपका क्रेडिट देखना चाहिए, इनकम अभी कैसी है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, या आपके पास एक बिजनेस है जहां पर आप जो है अभी प्रॉब्लम चल रही है, क्राइसिस चल रहा है, बट आपके पास एक प्लान है, आपके पास यू वांट्स टू बाय. सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इट्स ऑलवेज बेटर टू रीच आउट टू द प्रोफेशनल लाइक माई सेल्फ. तो अपनी प्री क्वालिफिकेशन चेक कराएं. आई कैन हेल्प यू टू गिव यू द प्री अप्रूवल लेटर. अगर आपको जो है कोई भी ऐसी सिचुएशन लग रही है जहां पे बहुत ही टाइट सिचुएशन है, आई कैन हेल्प यू किस तरह से अपने आप एक और प्रॉपर्टी एड ऑन कर सकते हो, या क्या व्हाट इज एग्जैक्टली डॉलर वैल्यू, हाफ ए मिलियन का ले सकते हो या मिलियन का ले सकते हो, राइट? और क्या आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ेगा, मंथली पेमेंट क्या पड़ेगी, ये सारी चीजें विल बी इंक्लूडेड एवरीथिंग ऑन द लेटर. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है गला करें, मुझसे इन्फॉर्मेशन लें एंड फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद मी. आई एम इन मिसेस आगा, ठीक है, मिसेस आगा रो डेरी थे, तो मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, कॉल टेक्स्ट करें. और साथ साथ किरण जी एक चीज और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा, काफी होम ओनर जो है इमरजेंसी फंड्स लुक फॉरवर्ड एट दिस पॉइंट. देखें समर इज ओवर नाउ, बैक टू वर्क, बैक टू स्कूल, सिचुएशन ऐसी है, काफी क्रेडिट कार्ड बिल्स पाइल्ड अप हो चुके हैं, काफी जो है चीजें जो है वो आगे पीछे हो गई हैं. तो उस चक्कर में अगर कोई होम ओनर नू अगर इमरजेंसी फंड जो है पह चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे, उनको कैसे निकाल सकते हैं. देखिए सेकंड मॉर्गेज की अगर बात करें तो सेकंड मॉर्गेज हमेशा 10-12% पे रेट पड़ता है, ठीक है, ऐसा ही है ना. और लैंडिंग फी भी है, ब्रोकर फी है, लॉयर की फी है, अप्रेजल है. तो किरण जी एक बहुत ही बढ़िया न्यूज लेके आए हो हमारे सारे लिसनर्स के लिए. तो स्टार्टिंग रेट फॉर द सेकंड फाइनेंसिंग इज 6.99%, राइट? 6. इट इज अप टू 75% लोन टू वैल्यू. अगर आपके घर में एक्विटी है अप टू 75%, आपको 1-2 लाख चकने हैं जी, तो 6.99 इज अ वेरी रीजनेबल रेट, यू विल नॉट फाइंड इन द प्राइवेट फाइनेंसिंग. इसके अलावा आपको मजे की बात यह कि अप्रेजल, यू डोंट नीड टू गो फॉर अप्रेजल, डोंट नीड टू डू द अप्रेजल. अप्रेजल कॉस्ट की सेविंग है, लॉयर की फी भी तुम्हें नहीं पे करनी है जी. ये सारी जो फी है विल बी पेड फ्रॉम द लैंडर इटसेल्फ, सो यू डोंट नीड टू पे. पहली बात हो गई. दूसरी बात है यू कैन टेक दिस प्रोडक्ट फॉर 1 year, 2 year, 3 year, ले सकते हो, चख सकते हो, और अपने जो भी फाइनेंशियल्स हैं, अपने बच्चों के स्टडीज के लिए, वेडिंग के लिए बेसमेंट बनानी है, या आपको कोई इमरजेंसी फंड चाहिए उसके लिए, अपनी क्लोजिंग आने वाली है उसके लिए चाहिए, एक नई प्रॉपर्टी बाय करनी है इस फंड से, तो वो भी पॉसिबल है. सबसे इंपॉर्टेंट बात है नो अप्रेजल कॉस्ट, नो लॉयर फी, और यू कैन गेट दिस फंड. किरण जी यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी डेज, विद इन सेवन डेज यू कैन गेट दिस फंड. सो दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर. यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 6475127000, 6475127000.
1: बिल्कुल, तुसी मुकेश चौहान दे नाल गलबात कर सकते हैं 6475127000. ओके मुकेश जी, अब हम लोग बात करते हैं कि स्पेशली जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है या कोई और जो बिजनेसेस हैं उनको फाइनेंसिंग की जो है काफी प्रॉब्लम आ रही है आजकल. सो आप क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन उन्हें देते हो और कैसे आप उनकी जो है हेल्प कर सकते हो?
0: डेफिनेटली देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज राइट नाउ इन रेड जोन. ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात करें, इमिग्रेशन बिजनेस हो गया आपका, कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो गया, राइट, रेस्टोरेंट बिजनेस है. सो स्पेशली इफ यू गो टू द बैंक, इट इज नाउ इट इज वेरी टफ टू गेट द फाइनेंसिंग, स्पेशली ट्रकिंग इंडस्ट्री. बट आई कैन वॉन्ट टू गिव यू गुड न्यूज के इट्स नॉट बैंक इज नॉट ओनली द ऑप्शन. बैंक के अलावा भी लैंडर्स हैं, जिसको हम ऑल्टरनेटिव लैंडिंग बोलते हैं, बी लैंडर्स हैं, अदर्स लैंडर्स हैं, जिनके थ्रू आपकी मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग हो सकती है. आपके पैसे, आपके पहे, आपके जो इक्विटी है, 2-4 लाख, 5 लाख डॉलर आप निकालना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ रीफाइनेंसिंग, इन द फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट. तो प्रॉब्लम ये कि जिनके पास 2 मिलियन भी पड़े हैं बिजनेस अकाउंट में, द बैंक इज नॉट गिविंग मच लिवरेज टू दोज बिजनेस ओनर. तो वहां पर अगर घर से निकालने पे हैं तो ये थ्रू रीफाइनेंसिंग से भी निकाल सकते हैं, थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट से भी निकाल सकते हैं. और स्पेशली अगर लो क्रेडिट है, बैड क्रेडिट है, जहां पे आपको दिक्कत आ रही है बैंक को एक्सप्लेनेशन में, पेपर पे पहले आंदे हैं मगर पेपर पे इतनी इनकम नहीं दिखाते हो आप बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेंसेस, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर अ बिजनेस पीपल. तो बिजनेस लोन और वर्किंग कैपिटल के लिए भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई एम अवेलेबल इन मिसिसागा मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 6 PM. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन. नंबर टू कॉन्टैक्ट मी इज 647-512-7000.
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी. सो बिल्कुल जी, मुकेश जी के नाल गलबात हो सकती है 647-512-7000. थैंक यू सो मच मुकेश जी.
0: थैंक यू किरण जी, थैंक यू.
1: थैंक यू, नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू.

0: हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले ढिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
0: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा ढिलोवीडियो.com होर कोई सेवा
2: मतलब स्वीट महल नहीं गए
3: नहीं मैं मर जा उठे क्यों होने
2: जीटीए दा सब तो स्वादला खाना ता मिलता है सही सुनिया बई जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है जलेबिया पकौड़े समोसे टिक्कियां व्या होवे पार्टी या होन किटियां स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइन इन करो या केटरिंग करवाओ इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉबिको स्वीट महल ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट
4: देखो जी करता है अपना नंबर वन पर मेरा दिल करता है अपना कर सारे तो सोना हो भी
5: बस इन्नी गल

0: तो बंदों को चूस लेता है और हम मतलब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई भी चलाकी नहीं है, कोई भी कागज नहीं हिल रहा, आपको सेटिस्फैक्शन है, नींद अच्छी आएगी, सही काम कर रहे हैं, कोई कागज हिला के नहीं दे रहे आप, ना किसी को आप परसेंटेज दे रहे, ना किसी को आप कैश दे रहे अंडर द टेबल।
1: अप्रूवल कितने दिन, अप्रूवल कितने दिन मिल जाती है तुहानू भी, ठीक है जी हाँ इहदों लोन मिल जू, बंदे नूं कितने दिन च पता लग जांदा, फिर ओह तां कि होर आसे पासे कोई लोन ना लैण दी कोशिश करेगा, फिर बंदा सोचदा यार मैं मॉर्गेज चक लवां, मैं रीफाइनेंस कर लवां, जां मैं आह कर लवां, जां ओह, फिर जे उहदा इधर हल पै गया अगला फिर सोचूगा वी बेहतर ज्यादा बैटर है ना।
0: बिल्कुल जी है, लोग आते हैं जो सुनते वो लाइक हमें सुनते हैं शो पे, फिर वो कहते हैं सर हम तो कहीं और से मतलब रीफाइनेंसिंग क्रेडिट कार्ड यहाँ से पैसे ले रहे थे, हमने आपको सुना, ऑफिस आए, एनरोल हुए और 2 से 3 महीने में फंडिंग क्लाइंट के अकाउंट में डायरेक्ट, हमारे नहीं, क्लाइंट के अकाउंट में
1: मिलेगी, नहीं मिलेगी,
0: ऐसा मिलने ना मिलने वाला क्वेश्चन ही नहीं है।
1: अच्छा
2: क्लियर ही है, मिलेगी।
0: अब अगर आप हमें अपना नकली पीआर कार्ड देंगे तो मैं क्या बोलूंगा इस पे, असली कागज ही होते हैं, गवर्नमेंट को असली कागज सबमिट हो रहे हैं आपके, बिना गारंटी के गवर्नमेंट दे रही है। स्किल डेवलप करें, इस पैसे को आप कहीं भी कैसे भी यूज करें, बैक होम भेजे, ग्रोसरी करें, इन्वेस्ट करें, और 2.5 साल बाद पहली किस्त स्टार्ट है, शुरू में ब्याज 0%, 2.5 साल बाद ब्याज 2.5% पूरे साल का, हमारी फीस भी हिडन नहीं है, ये नहीं कहते मीठी मीठी बातें करके, आप हमारे ऑफिस
1: 400
0: बिल्कुल जी, फिलहाल के लिए वही है, बट आई थिंक एक हफ्ते में 499 वाला फिर से हमारे पास सीट्स होंगी उसकी, क्योंकि अभी तक तो वो फुल ही जा रहा था। बिल्कुल जी हो जाएंगे, इसलिए आप पीछे ना रहिए, अपना मतलब ऐसा लोन आपको कहीं नहीं मिल सकता, आपकी एज मैटर नहीं करती, आप चाहे हाउसवाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, लाइक आप स्किल डेवलप करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज है सर, आसान है, आसान, हम मुश्किल में डील नहीं करते, क्लाइंट्स आते कहते हैं नखरे करते ये वाला करा दो कभी कभी 10 में से 1 क्लाइंट, हम कहते हैं हैंड्स अप, कहीं और से करा लो, हमें गाली नहीं खानी है ना, अब वही मटेरियल करते हैं जहाँ पे हमारा हाथ है, आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथिक की दवाई है, लोन हासिल करें, इसकी क्लासेस 437-264-3175 कॉल करो, एस्टीमेट लो 437-264-3175 437-264-3175
1: 437-264-3175 कर सकते हो मान साहब
2: जी।
1: मैं ना एक तुम देखा होगा सुनया होगा एंड्रू कार्नेगी है, उन्होंने पूछा भी किसने भी तुम भाई इन्ने अमीर तुम किवें बन गए, किवें किस तरीके ना काम किवें करते हो, जवाब जवाब बड़ा कम का बड़ा कमाल लोगों पेश होना यो है ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ
2: ਜੀ
1: ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਇਉਂ ਆ, ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਟਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਨੋ ਟਨ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ
2: ਨੂੰ
1: ਮਿਲਦਾ।
2: ਹੁਣ
1: ਜੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ,
2: ਤੇ
1: ਜੇ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝਾੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਝਾੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
2: ਉਹ
1: ਤੇ ਫੋਕਸ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
2: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ
2: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਫੋਕਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ,

0: Friday, September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: Pehla aaya si badi model dikhi, ummeed karda ha. Is baar bhi tusi aashirwaad doge.
2: Ve aaja do me nal nachiye, nachiye baach baah pa. Ve aaja do me nal nachiye.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
4: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
3: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
4: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
5: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
4: 416-509-1509
5: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: दोस्तों, देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नूं सुणन वास्ते जां देश परदेश नूं लाइव देखने वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com। लाइव सुनना चाहते लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहते हैं तो उत्ते क्लिक करो, या फिर अपने IPTV बॉक्स के उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नूं क्लिक करो, उत्ते तुसीं सुन भी सकते हो, वेख भी सकते हो 24/7।
6: देयर आर सिंगर्स, देयर आर परफॉर्मर्स, and then there are legends. A voice that has defined generations, the one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Live and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit ticketmaster.ca.
3: Hello, AM 530 to tusi sun rahe ho apna harman pyara radio program Desh Pardesh Prime Time Radio. Pichle 30 varyan to tuhade ang sang Desh Pardesh hun apne sham de program de vich vadha kar chuka. Pehla tu sunde si Monday to Friday 4 to 6, lekin hun tu sunde ho 3 to 6 shami, jani ke Desh Pardesh शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसीं दुपहरे सिरड़े 1 तों लैके शाम दे 4 बजे तक देश परदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश परदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381, 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551। देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो सेवन डेज अ वीक तुहाडे अंग संग। चलो AM 530 ते दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उड़ान भरन तो पहला एक नाम याद रखो, कोमल ट्रैवल एंड टूर्स। डेस्टिनेशन बेडिंग करनी है, शिप क्रूज ले जाना है, या फिर किसी आइलैंड ते हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज, ता कोमल ट्रैवल। इंडिया पंजाब लई डायरेक्ट फ्लाइट बुक करने वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वाले नू 905-248-7711 905-239-77

0: ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
1: ਜੀ ਸਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਸੇ ਹਮ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸ ਹੈ 218 ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲੇਟ ਪੇ ਲੋਨ ਕੀ ਰੇਂਜ ਹੈ 50,000 ਸੇ 1,70,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਆਸਾਨ ਸੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੇ और लाइक ऑन अदर हैंड आप लाइक फुली ऑनलाइन कोर्सेज है ऑन अदर हैंड आप लोन को अपने अकाउंट में हासिल करें 0% पे है ये लोन और ऐसा लोन आपको कहीं से मिल ही नहीं सकता
1: जी ये फंडिंग मिलती है इन्हों आप कितने यूज कर सकते हैं मतलब जेड़ा खर्चा करना हो अपने आप ते कर सकते हैं या पढ़ाई ते ही खर्चा करना है दा?
2: हाँ जी इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो इसको मतलब इन्वेस्ट करते हैं या अपने डेली नीड्स के लिए यूज करते हैं कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है पूरा पैसा आपके खाते में गवर्नमेंट देती है और कहीं भी आप इसे यूज करें
1: जी सर जो कोर्सेज करने हैं इन्हों का सब तो ज्यादा मैक्सिमम फायदा किनू हों
2: हाँ जी इसमें फैमिली साइज अगर आपका ज्यादा है लाइक हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी एज 40-50 इयर्स है उनके 2-3 बच्चे हैं तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं तो उनको फैमिली ऑफ 4 को 1.5 लाख फैमिली ऑफ 5 को हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं तो 170,000 डॉलर का लोन आता है 0% पे कहीं भी यूज करें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड लाइक देयर इज नो कैच इन इट कोई भी इसमें चलाकी नहीं है
1: जी ते थोड़ा जे भी दसो कि जेडे ये कोर्सेज ने इना दे टाइम ड्यूरेशन की है ते जेडी पेमेंट्स आ ओ कदों शुरू हुंदी है कदों कदों पेमेंट्स करनियां हुंदियां ते बारे भी थोड़ा दसो प्लीज
2: हाँ जी पेमेंट तो कोई करनी नहीं है गवर्नमेंट ही आपके यहाँ पे खड़ी हुई है आपके लिए कैसे मतलब 2 साल का कोर्स है तो आपको लाइक इसमें 4 किस्तों में पैसा आता है गवर्नमेंट से ईयर 1 में अलग आते हैं ईयर 2 में अलग आते हैं डबल मनी आती है राइट बिजनेस का कोर्स है ऑनलाइन है कहीं नहीं जा रहे आप घर ही बैठे हैं फोन पे लैपटॉप पे क्लास लगा रहे हैं और आपके पास 1,70,000-1.5 लाख तक लोन आ गया कहीं भी आप इसे यूज करें और इससे मतलब जितना ज्यादा फैमिली साइज है उतना आपको ज्यादा बेनिफिट है
1: ओके ठीक है ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ
2: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਪਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇ ਲੋਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਯੈਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਬਟ ਲੋਨ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਗਾੜੀ ਕਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਇਸ ਲੋਨ ਪੇ ਜੋ ਕਿ 0% ਪੇ ਹੈ ਔਰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸਕਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਆਪਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਤਾਂ 0% ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਜ 2.5% ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ ਗਾੜੀ ਕਾ ਲੋਨ ਉਤਾਰ ਦੋ ਇਸੇ ਆਪ
1: ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪਾਸ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਮ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਮੇ ਡੀਲ ਕਰਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੈ ਆਸਾਨ ਆਸਾਨ ਈਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ और भी तरह के 3-4 प्रोग्राम्स हैं सब आसान है सब ऑनलाइन है कितना ही हाउस वाइफ है उबर ड्राइवर है अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड लोग घर के कंफर्ट से कर रहे हैं लोन हासिल कर चुके हैं और अब लाइक टफ टाइम में उनको बड़ी हेल्प हो रही है
1: जी ते सरांश वैसे तो काफी सारे अपने आप भी लोग अप्लाई कर सकते हैं काफी सारे होर भी एजेंसीज है जो हेल्प करते हैं लोग थानू ही क्यों चुनन इस लिए
2: हमारी फीस ट्रांसपेरेंट है हम पूरी कम्युनिकेशन में पूरे इंटरव्यू में फीस बताते हैं ये नहीं कि मीठी बातें करके टिका देंगे हमें फोन करें तब फीस बताएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है साफ कर रहे हैं फीस हमारी कितनी काम होने के बाद $190 फ्लैट फीस है
1: जी
2: दैट्स इट कोई हिडन फीस कोई परसेंटेज कोई कमीशन नहीं है साफ काम कर रहे हैं 8 साल में हजारों को असिस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी
1: तो तुम अपना एड्रेस भी दे दो नंबर भी शेयर करो सो दैट कितना लोग रीच आउट कर लें
2: बिल्कुल जी एड्रेस है जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरेंटरी डेरी पे आप आज भी आ सकते हैं और हमारा नंबर नोट करें अभी कॉल करें असेसमेंट कराएं 437-264-3175 437-264-3175 ऐसा लोन आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसकी किस्त 2.5 साल बाद स्टार्ट है और 0% और 2.5% ब्याज है पूरे साल का 437-264-3175 437-264-3175
3: अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ। कॉल करो उमरप्रीत चावला नू जिना तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो। ते नाली

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मॉडल दिखती, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा दो में लाल नचिए नचिए पाँच बाहपा वे आ जा दो में लाल नचिए।
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 6474481000.
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले।
4: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
5: जेकर तुसी भी किसी तरह की लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लिए हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 6457-3381।
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
6: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।